0: इंस्पेक्टर नहीं, ब्लैक कोबरा।
1: मिस लवलीना, 34A 7th रोड, विले पार्ले जुहू।

0: क्या होगा? पुलिस तो हमारी मुट्ठी में है।
1: You don't talk nonsense.
2: Central.
3: Yes, boss.
2: माल अंडरवाटर टनल से क्लियर होना चाहिए.
3: अंडरवाटर टनल इज रेडी.
2: गो अहेड.
4: हाउ आर यू? हैंड अप.
5: Turn on Triple B FM.